परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यम्। अलकपुरी जी महादेव की, देवाजी देव शिव स्वरूप देवपुरी जी महादेव की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, आराध्य सतगुरुदेव हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की, सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की जय। आराध्य गुरुदेव के सभी परम भक्त धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। गुरु पूनम का पर्व, आप सभी को ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की ओर से आशीर्वाद, ब्लेसेड सेल्फ, स्पिरिचुअल सीकर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, टुडे ऑन दिस होली ओकेशन ऑफ श्री गुरु पूर्णिमा, ब्लेसिंग इज कमिंग फ्रॉम ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा।

और अगर वो कुरान उर्दू पढ़ेंगे तो आप स्वीकार नहीं करोगे, क्यों? आप नहीं समझ रहे हो। रामायण भी कहती है अच्छी बात, कुरान भी कहती है, बाइबल भी कहती है, डिफरेंट इज ओनली द लैंग्वेज, इज ओनली वन। एक कहता है कि मेरे दादी सा है, कौन है? दूजा कहता है कि मारी मामी है, कौन है? तारा मामा री बू है, कहीं मारी माँ है, मामी नहीं कहना। एक है मारी दादी है, एक है मारे माँ है, दूसरे कहता है कि मारी बेटी है, तीसरे कहता है मारी बहन है, और दूसरा कहता है मारी बुआ है, दूसरा कहता है मारे काकी है। आंटी नहीं है बेटा, आजकल कह के आंटी, ये आंटी थारी बापरी आड़ी क्यों गंदी गंदी बात करो, है काका काकी बाजी बाजी वो करो। लेकिन दूसरा कहता मेरी बेटी है, मारी पोती है, है वो महिला एक ही है क्या? नहीं, एक ही महिला है, नाम से बांट दिया, भाषा से बांट दिया, दादी है, माँ है, बेटी है, बहन है, बुआ है, काकी है, पोती है, बट है वो एक ही। सिमिलरली गॉड इज वन, व्हिच गॉड हैज नो नेम, and all are talking about a God for oneness. So this education, the ethic and spiritual education we get in the Gurukul. Gurukul means school. अब हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं कि जाटन गुरुकुल में भर्ती करिया है। नहीं बाप जी, हमारे गुरुकुल में नहीं जानो, हाँ हमारे स्कूल में जानो है। ठा तो है को नहीं बाबजी, मां टावरों ने हिंदी नहीं पढ़ानी, अंग्रेजी पढ़ाओ तो नौकरी लागी। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग इस प्रकार से सोचते हो कि हिंदी पढ़ाओ तो हमारे छोरों ने नौकरी नहीं लागे, नौकरी पड़ी खाडा रे माए। मनुष्य बनाओ बच्चे को, आज हिंदी का टीचर ही को नहीं मिले, संस्कृत का कोई मास्टर ही को नहीं मिले, अंग्रेजी पढ़ी रहा रो तो फिर मन झाड़ू लगावाने को नहीं रखे। इसलिए दुर्भाग्य है कि हम हमारी संस्कृति को छोड़ दिया, इसलिए कि तुम्हारे पास गुरु ज्ञान नहीं है, तुमने वो ज्ञान सीखा, तुमने वो संस्कार सीखे, जो संस्कार तुम्हारे को आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि वो संस्कार आपको वो संस्कृति नहीं बनाने देगा। संस्कारों से संस्कृति बनती है और संस्कृति से मानव बनता है, मानवता की देश की रक्षा करता है संस्कार। आज तो बस नौकरी चाहिए पया, अंग्रेजी बोलो, नहंग जगह अंग्रेजी बोले बेटा, न केवल अंग्रेजी में भाषण दोगे, नहीं नहीं मैं हिंदी में बोलू बाप जी, बोलो आदि कचरी है। हमें अंग्रेजी बोले, मैंने कहा मैं रस्त पूछ कर जानो के स्टेट, अरे बाबा जी स्टेट जाओ, अरे की स्टेट में जाऊं, गुजरात में जाऊं के राजस्थान में जाऊं के मध्य प्रदेश में जाऊं, हमें स्ट्रेट तो नहीं कह रही, स्टेट स्टेट आ थोड़ी अंग्रेजी, अरे पूरी सीखी नहीं। बंगाल से एक लड़का गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, 3 साल के बाद वापस आया और रविंद्रनाथ टैगोर के पास गया, अंग्रेजी बोल रहा है, टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं, तो टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं तो वो टैगोर साहब को कह रहे मुझे अंग्रेजी पसंद है, तो टैगोर साहब ने कहा अच्छी बात है बोलो अंग्रेजी। वो 4 शब्द नहीं कियो और टैगोर साहब ने कहा कि बेटा तू अंग्रेजी ही क्यों बिना ही तू बंगाली भूल गो है,

तो तुम लोग अंग्रेजी पूरी ही क्यों बिना थे, मारवाड़ी राजस्थानी बोल गया, हमारी मातृभाषा है, उसके द्वारा ही, उसी भाषा के द्वारा तुम्हारी शोभा है और दूसरी शोभा नहीं है। हमारे देश की संस्कृति वही काम आएगी। कहा है कि बणियाणी रेसी नहीं, रेसी सुधारी, होनारी परिजाव सी के बाबी कुमारी, है कि बणियाणी रे नी ने रेसी सुथारी, आ होनारी परी जाई के बाबी कुमारी। कौन कह रही है? रावण को, रावण की पत्नी के, रावण तू बना करके हट करके सीता को लाया, वो नहीं रहेगी, वो थाकी को नहीं है, रेसी सुथारी थारी है, वो ही रहूंगी, है हट करियो तो होनारी लंका परी जाई। कौन कहवे? कुंभकर्ण की बाबी मंदोदरी कह रही है। तो इसलिए थे उदार लायोड़ी भाषा ने, पढ़ने पेट भरा मत करो, बुद्धि ज्ञान उसमें ज्ञान भरा है संस्कृत के अंदर में। एनी हाउ सॉरी दैट आई हैव टू स्पीक बिटवीन इन हिंदी एंड संस्कृत, आई डोंट नो, सो आई हैव टू स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश बिकॉज ऑल ऑफ यू, बट आई एम टेलिंग दिस इंडियंस दे शुड लर्न देयर मदर टंग and then after they should learn English. They don't know English and they forgot the Hindi. I asked someone address, I have very wished the direction is going there. Oh, where is that place? So say state. State is not a path, direction is straight. But wo straight to aata nahi hai. Or महाराज जी वो क्या कहते योगा के अंदर हमें, तो हम कहते हैं अच्छा भाई, अरे भाई गाड़ी चलाओ, कॉन्सेंट्रेशन करो, तो वो कहे कौन सा स्टेशन, अरे बाप जी कौन सा स्टेशन चल रहे हो नहीं, लो कॉन्सेंट्रेशन ने कौन सा स्टेशन, आधारी अंग्रेजी ने आधारी हिंदी, सही बात है कि नहीं। इसलिए दैट्स वाई गुरु पूर्णिमा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एडुकेशन, सनातन वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन एबिलिटीज, दिस इज अ गुरु पूर्णिमा एंड देन इज अ वर्शिप्ड ऑफ दैट Divine who gave you the knowledge. Then is the birthday of Bhagwan Vedvyasa, and every disciple adores, remembers to keep this living culture. So Guru Purnima is a festival of the culture, to protect the culture is called the living culture. सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म, सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म, व्हाट डज इट मीन्स, व्हाट मीन्स द लिविंग धर्म, वन मदर गिव्स ए बर्थ टू ए चाइल्ड, it is the dharma of the mother to give birth to the child, it's her dharma, wo sanatan dharma hai. A one tree gives you fruit, it is the dharma of the fruit tree to give the fruit. Ek maa bachche ko janam deti hai, bachchi ko janam deti hai, wo unka dharma jo hai wo sanatan dharma hai. Aur is युग के अंदर, इस आधुनिक युग में गुरु के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता है। कौन सा गुरु? थारा मास्टर स्कूल में, स्कूल के मास्टर आपके गुरु है,
इसलिए और सभी सिस्टम विल स्टॉप ब्लॉक बट द सनातन धर्म गुरु एंड डिसाइपल विल एवर एंड एवर विल लास्ट दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इटर्नल रिलीजन ऑफ सनातन द रिलेशन ऑफ द मदर चाइल्ड हस्बैंड वाइफ नेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा Therefore, the Guru Purnima has a great meanings than other any festivals. हम मनाते हैं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी वो एक ही जन्माष्टमी मन रही है लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है अरबों खरबों महर्षि ऋषि मुनियों की और आने वाले संतों की वो बनती रहेगी वही इसीलिए That is the greatest festival. That's called living festival. Sorry. Guru Purnima is living festival. Jinda aur sab sampradaya chali jayegi, lekin ye sanatan sanskriti kabhi nahi mitegi, kyunki ye shishya aur guru ka nata hai. आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद आप आए यू कैम ऑल वेलकम नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद देन आफ्टर विल बी भजन एंड भजन के बाद में आनंद और आनंद के बाद में जागृत तो जागृत सुसुप्त और स्वप्न तीनों ही एक ही पंडाल के नीचे दर्शन होगा कोई तो करेगा ऐसा दूसरा कहेगा हाँ है तो खाना पीना ने सोना और गाना सब यही पे होना के बाबूजी कमरों के कमरा तो गणे जा हुई जा कमरा की कोई कमी नहीं है हमें तो कमरा खूब है पर माँ कोई नाग देवता बैठा वेला तो आ बारिश में खेत पानी भरियोड़ो हैंग है जको ध्यान राख जो भाई सरप अरप आ जाता है इसलिए इधर उधर जाते हो और दूसरे ये बार बार हमेशा कहते हैं कि लोग चले जाते हैं लघु शंका करने के लिए पेशाब करने के इधर उधर ये पानी हमारे तालाब में जाता है पानी पीने को जाता है बाथरूम बने हुए हैं उधर ही जाना अब इस बार पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर आप को बाहर इधर उधर निपटते देखते हुआ तो पुलिस वाला फोटो लेगा कहला कोई को नहीं पुलिस वालों को मैंने ऐसा फोटो दे रखा कैमरा दे रखा है दूर से वो देख करके क्लिक करेंगे और कहेंगे बाप जी ओ अटे बैठो तो इसलिए हमें उसी जगह जाना है जहां सुविधा दी हुई है भजन होंगे रात्रि भर आप भजन गाना सुबह प्रोग्राम होगा 8 बजे 8:30 बजे गुरु पूजा होगी गादी की और उसके बाद में यहां से भी सज्जन आएंगे दर्शन करेंगे तो कार्यक्रम चलता रहेगा अब भोजन होगा तो आप सभी प्रसाद पाए और आफ्टर वन आवर ईटिंग इट विल बी अगेन द सत्संग विश यू ऑल द बेस्ट ऑल डियर Brothers and sisters around the world, if you want to listen the bhajans, then it will be webcast and bhajans. Whenever you like, you can put on your television and you can see or hear the bhajan.

0: राधे भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेव की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सत गुरुदेव की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: You do it, Puspa. One bhajan. If I like it more, then I will have one more.
2: Satguru Dev ki jai.

0: श्री अलकपुरी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्री दीनानारायण भगवान की जय।
1: हिंदू धर्म शर्मा श्री माधवानंदपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमानंद स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी
0: गुरुदेव की जय।

पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परिब्रज काचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी महाराज की जय।

0: जय। राजे भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री होली गुरु जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु जी परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: सत्य सनातन धर्म की जय।
2: वन मोर भजन, डजंट मैटर विच वन।

सर्वप्रथम सद्गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। आप सभी साधकों बुद्धिजीवियों को प्रणाम करता हूँ। माई सेल्फ DC सुरंगानंद तिवेराज, गिटारिस्ट ऑफ अनूप जलोटा एंड रेडियो TV। थैंक्स। आई एम फ्रॉम अजमेर, राजस्थान। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग यू गुरु वंदना।

0: हरि ओम हरि हरि ओम। धन्यवाद।
1: थैंक्स। प्रणाम। धन्यवाद। समय हो तो मीरा का या कबीरदास जी का या अनूप जलोटा जी का 15 मिनट देंगे, 10 मिनट। ओके। माय गुरु अनूप जलोटास इट भजन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।

आने लगी महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन।

प्रीत न कर जो को। मीरा कहती है, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, अरे थारा देसा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो।

शांति शांति शांति शांति सद्गुरुदेवाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ, आपका धन्यवाद। If you want, thank you.

गुरु महेश्वरानंद जी की शरण में, सुरंगानंद दिव्यराज, नाथ शिवानंद अजमेर, शिवम शारदे कला केंद्र।

और सुनो, इनफ। धन्यवाद। ए लिटिल कंपोजिशन रिटन एंड कंपोज बाय मी, प्लीज हियर एंड एंटरटेन, एंड प्लीज पीस टू गॉड एंड प्रेयर टू आवर गुरुदेव। In the words, nothing. झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार है, झूठे जगत का झूठा तमाशा, झूठा कारोबार है।

0: जी गुरुदेव। मिला,
1: एक महीने पहले आए थे,
0: पूरा पूरा परिवार आया था आपके शरण में, बड़ी खुशी है। हाँ मैं तो चलेगा, लेकिन आप, मैं नाचीज कुछ नहीं आता। हरिओम।

सतगुरु साहिब देवपुरी सा, सतगुरु साहिब देवपुरी सा, सब संतन सिर ताजे, सब संतन

तेसरेव सदगुरु दियो संदेशो नहीं जीव ईश ब्रह्माया में केवल एक अजाया रे ये महान सत उपदेशा नहीं है ओम सोम रुवाणी में शब्द तीत दहनी रे मोरा सदगुरु दियो संदेशो।

ये अमर मंत्र है ऐसो, ये गूंज भेद कहे गाथा श्री स्वामी दीप फरमाया रे, बड़े भागी जन सुने रो। मोरा सदगुरु दियो संदेशो रे, मैं हूँ जैसो को तैसो, नहीं जीव ईश ब्रह्म माया में केवल एक अजाया रे। ये महान सत उपदेशो, नहीं है ओम सो।

0: की
1: जय। जय पुरुषमहादेव
0: की
1: जय। श्री शरण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी की जय।
0: गुरुदेव की जय। दी शांति शांति। जी जी
2: भी आपका।
0: अरे अरे अभी पहला मौका है, पूरी पार्टी लाऊंगा साजो सामान सहित जब आदेश करेंगे आप। और मुझे तो आपके शरण में देश विदेश में आपके आश्रमों में जहाँ आप आदेश करो।
1: कमरा दे दिया उनको,
0: रुकूंगा आप जब तक कहोगे रुकूंगा।
3: बोले शंकर भोले ओ, ओ, ओ, ओ शंकर भोले।
0: शंकर भोले रिटन एंड कंपोज्ड बाय मी। आई एम प्रेजेंटिंग गुरु शरणम।
3: जय शंकर भोले जय शंकर भोले दादा दादा दादा। जय शंकर भोले जय शंकर भोले। शंकर भोले शंकर भोले ये सारा जग बोले। जय शंकर भोले

शांति शांति शांति सद्गुरुदेवाय नमः मातृता गुरुदेवाय नमः भारत भूमि नमः ओम।

नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।

0: अनंत ब्रह्मांड की रचयिता, सृष्टि के पालन करता, घट घट में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन। परम श्रद्धेय परम आदरणीय पूज्यपाद प्रातस्मरणीय हमारे घनिष्ठ मित्रों में हमारे घनिष्ठ प्रिय गुरु भाई और हमारे पूज्य महामंडलेश्वर श्री हरिचंद्र जी महाराज की परम कृपा से आज हमारा यहाँ आना हुआ। पूज्य स्वामी जी की कृपा से हम सभी लोगों को जो विशेष करके भारत से आए हुए हैं अभाग्यशाली हैं कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय पूज्यपाद का आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। आपका बहुत प्रेम है और प्रेम ही सबसे बड़ा है। प्रेम छुपाया न छुपे प्रेम करे प्रकाश, दाबी दुबी रहे नहीं कस्तूरी की बास। तो प्रेम कभी छुपता नहीं, तो उसी प्रेम के साथ में उसी प्रेम वाणी से आज हम कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे योग के बारे में। पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री ने योग की महिमा गागर में सागर भर दिया। योगा कर्म सुकौशलम, योगा अग्नि कर्म दग्धानी। योग के बिना मानव का जीवन सफल नहीं होगा। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, गुड इवनिंग। आई हैव टू स्पीक नाउ लिटिल बिट इन इंग्लिश बिकॉज आवर भक्तास फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज केम विथ मी एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो वुड लाइक टू हियर व्हाट आई एम telling or talking. You all speak English very good because you live in America. And Swamiji need not to understand because he is in his inner dhyan mein sab kuch mil jata hai. He knows what I am saying, that's enough. Theek hai na?
1: Perfect.
0: और उसमें अगर हम कुछ गलती करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जो हमारे लिए समथिंग, थैंक यू। योगा, योगा कर्म सुकौशलम, कर्म के द्वारा हम योग की प्राप्ति कर सकते हैं। महाराजा भर्तृ, व्हेन ही बिकेम ए सन्यासी, ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग। देन ही सेड, आई वुड लाइक टू पे माय रिस्पेक्ट टू ऑल देवास, ऑल गॉडेस। बट देन ही सेड, बट ऑल द देवास, ऑल द गॉडेस, दे are bounded by karma. Okay, then I will pray to God, Brahma, Vishnu, etc. Then he said, Bhagwan, jinhone avatar liya hai, two kinds of incarnation, Nimit and Nitya. So why should I not pray to the God? Then he said, no, God is also bounded by karma. Shashi dalaraha, shame dalaraha. Lakshman ki pran jaraha. Hanuman kab aoge? Na malum mere kis janam ke karam phal raha. Tab Bhagwan Ram bhi ye keh rahe hain. To, yes. So the Maharaja Bhartri, he became monk, sannyasi. So now he think I will pay my respect and adoration to the Supreme who incarnated. Then he said, but they are also bounded by karma. There's a story in the holy book Ramayana, and where there Bhagavan Ram is saying that Lakshman's, this story next time I will tell you perhaps. Then the Maharaja Bhartri, the King Bhartri said, why I should not pray and respect the karma? Bhagavan bhi karam se bandhan mein hi hai. तो मैं कर्मों को क्यों नहीं नमन करूं? इसीलिए the action is the greatest. Time will not wait for anyone and the karmas will not leave you free at all. Therefore, where the action is, there's a reaction. And when there's a reaction, there's an action. Action, reaction, action. Now, we don't know. Are we here in this life as a reaction or action? This is a cycle of birth and death. Coming, going, coming, going. All through the sadhana, through the yoga, practice and the blessing of the saints and Guru Kripa Hi Kevalam. Well, in this creation, 8.4 million different kind of the creations. One is the human. And human can get that liberation or become free from the karma. But human need it. God gave a most powerful tool to the human, and that's a buddhi. Buddhi means intellect. Needs education. Which kind of education parents gives us, like that we will be. Education should be that kind of education, what we call ethic, morals, and spiritual. This makes a human. Otherwise, body is like a human, but behavior, quality,

0: to the psychiatric doctor. And what doctor said? Oh, he's a psychic. Both husband and wife comes at home, looking in the mirror. I'm psychic. Yes, doctor is right. When doctor don't know exactly what is the cause in this, then it's very easy to say it is a psychic. When the bhakta comes to Guruji and tell Guruji, I have this samasya, this problem, to Guruji kahenge, haan, achha hai, but it is your karma. Wo karmo pe dal dete hai, Hariyom. How to get the chuti to psychic? What is a psychic? Psychic is that kind of emotion which you could not fulfill, and it is in your unconscious level, and now that has lost the form. If you know what is the cause or reason, you can solve your problem, there will be no psychic problem more. So they went to the psychiatric treatment, to psychologist, and they were analyzing every day, coming once a week one day, and they were asking what you did and what you did not, and this and this. And one day, one point came, and that point came about ice cream. And his wife said, yes, I prohibited my husband few times not to eat ice cream. Do you remember? He said, yes. Yes, you didn't give me ice cream. Yes, you were dreaming. He said, yes, I was dreaming. Then the psychologist said, okay, finish today's. Our talk is finished. I would like to go with you for a little bit in the market. Let's go. And he lead them to the ice cream shop and sit there, and all three of them said, let's enjoy the ice. They ate the ice, and he was so happy, no anymore depression. So this is our mind. Therefore, yoga is that kind of science of the body, mind, and consciousness. So the mind. So Kundalini, Ida, Pingala, Sushumna, and the fourth one is called Vajranadi. Vajranadi begins from the small and big toe. Vajranadi controls our immunity in the body. Vajranadi controls our Ida, Pingala, Sushumna. Vajranadi controls our heart, that we don't get a heart attack, and also brain hemorrhage. Vajranadi begins from the big toe and second toe, and it goes through and is supporting the Sushumna Nadi. Like when we build a building and we have earthing cable. So Vajranadi is like an earthing, so there is no any bad things, attack happens to our body or mind. And therefore, you have to practice those certain postures of yoga that you can avoid such accidents. Mind. Let's come to the man. Man kya hai? Man lobhi, man lalchi, man chanchal. Man chor. Man ke mate mat chaliye, ghadi palak, man aur. Man lobhi, man lalchi, man chanchal, man chor. Man ke mate na chaliye, ghadi palak, man aur. Mind is a greedy. Man lobhi, man lalchi. Mind is full of the desires. Man chanchal, mind is restless. And man chanchal, man chor, and mind is also the thief. No? Chori kari deta hai. भगवान कृष्ण भी उसको नहीं रोक सकता है, चोरी करने में मन मक्खन चोर देता है। पता है भगवान को कि मक्खन चोर कर दिया और हमारी मैया को जाकर के वो सभी शिकायत करेंगी। तो मन चंचल, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चाले, डोंट फॉलो योर माइंड, क्योंकि माइंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। दैट्स इट। व्हाट इज अ माइंड? मन का देवता चंद्र, दैट्स वाई बिसाइड मी हरिश्चंद्रपुरी जी महाराज। देखिए वो हमारे देवता है, ही इज कंट्रोलिंग। इसीलिए तो ऐसे महान पुरुष पास में बैठते हैं तो हमारे को सावधानी से बोलना पड़ता है। एवरीथिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ द माइंड इज द मून, एंड मून इज एवरी डे व्हेन मून कम्स आउट और मून राइजेस नेवर इक्वल। चंद्र हमेशा एक सरीका नहीं आता है, घटता बढ़ता रहता है। वैसे मन जो है संकल्प विकल्प करता रहता है, यही मन का धर्म है, क्योंकि मन चंद्र से मिला हुआ है। एंड मून मीन्स इमोशन, इन मोशन, यू आर ऑल द टाइम्स इन द मोशन, इमोशन, एंड इमोशन मीन्स वाटर। सो चंद्र जो है पानी का प्रतीक है, और वो जल जो है पानी वाटर, वो वाटर इज चंचल मूविंग, देर आर द वेव्स, सो यू आर इन द मोशन इज द इमोशन। बट व्हाट काइंड ऑफ मोशन यू हैव, सम टाइम इज ए हॉरिकन, अरे वाह, फ्लड है। राजा योगी अग्नि जल, जिसकी उल्टी रीत। राजा योगी अग्नि जल, जिसकी उल्टी रीत। सावधान से परशुराम जी कह रहे हैं कि थोड़ी देखे प्रीत, इनसे आप ज्यादा दोस्ती मत करना। राजा भी ठीक है, कभी होते होते वो लगा देता लात। हाँ वो नेता होता है ना, नेता तो टिकट की समय तो आएंगे, हाँ बाबूजी कैसे हो, भाई साहब कैसे हो, ऐसे है। जीत गया उसके बाद तो हाथ नहीं मिला था या टेलीफोन भी नहीं मिला था। ये बातें होती है माइंड। नाउ व्हाट इज द माइंड? सो माइंड हमारा जो है, माइंड इज लाइक ए कैमरा, ही इज गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन and transferring to the subconscious. And what is the hidden written in the subconscious brings up and gives to the consciousness, intellect, buddhi. And what is a buddhi? Buddhi ka dharm kya hai? Buddhi ka dharm hai uska judgment dena. So intellect gives the judgment and mind brings and goes. Therefore mind has no responsibility. It's only coming and going, coming and going, coming and going. So that is a mind. Intellect is giving judgment, but viveka, that is which leads us further. So yoga, आसनास, प्राणायाम, चक्रास, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्रार, दिस आर द एट चक्रास विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी। तो योग अनंत है, अनंत हरि कथा। साथ में आता है आसन, आसन प्राणायाम, ध्यान धारणा तो आसन कई प्रकार के आसन कहलाते हैं। ये महाराज श्री का जो ये गद्दी बिछी हुई है इसको भी आसन ही कहते हैं। महाराज जी आपके आसन पे बैठिए वो भी आसन है। आपका आसन कहाँ लगेगा, रात को सहन कहाँ करोगे, वो भी आसन है। और पोस्चर्स जो है वो भी आसन है। आसन की परिभाषा बहुत कुछ है, लेकिन मेडिटेशन करते समय काया स्थैर्यम मोशनलेसनेस ऑफ द बॉडी, मोशनलेसनेस ऑफ द बॉडी फिर मेडिटेशन होता है। ये गिलास पड़ी है, गिलास के अंदर पानी है, गिलास स्थिर है, पानी भी स्थिर है। गिलास इज मोशनलेस, द लिक्विड इनसाइड इज ऑल्सो मोशनलेस, बट एज सून एज आई टेक ग्लास इज मूविंग लिक्विड इज मूविंग। सिमिलरली इफ आवर बॉडी इज कंफर्टेबल एंड मोशनलेस आवर माइंड इज ऑल्सो स्टडी। संकल्प विकल्प के अंदर में धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आता जाता है, फिर मन मेडिटेशन हो जाता है। तो दैट इज लॉन्ग वे आसन। अब आपको थोड़ा सा बता दूंगा, नहीं तो स्वामी जी कहेंगे बाबा जी को माइक दिया और पता नहीं कब तक पकड़े रहेंगे। तो अब बस हो गया पूरा। धीरे से आपको कुछ बताता हूं, सभी बैठे हैं। अरे आए तो खाली बातें करने से कोई भूख थोड़ी मिलती है, मिटती है भूख, मिटते क्या बातों से भूख नहीं मिटती है, बात करने से पेट नहीं भरता है। टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग, टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग कंपेयर्ड विद द ग्रेम ऑफ प्रैक्टिस। तो खाली बातें करते जाओ बातें करते जाओ, पेट नहीं भरेगा। अरे कुछ खाने को तो दो, एक भी चना दे दो तो कम वो पेट में जाएगा तो कम से कम वो तो थोड़ा काम करेगा ही। भूखे को बताते जाओ कि हाँ श्रीखंड आ रहा है, ओहो हलवा आ रहा है, पूड़ी आ रही है, और क्या आ रहा है, अरे समोसे आ रहे हैं, लड्डू आ रहे हैं, अरे जलेबी भी बन रही है। वो भूखे के बेचारे के पेट के अंदर में आवाज हो रही है बादल की तरह, लेकिन आया क्या, कुछ नहीं आया। डपोट संघ का नाम सुना आपने, आप लोगों ने डपोट संघ का नाम सुना? महाराज जी आपने सुना?
1: नहीं अभी तक नहीं सुना,
0: सुना दूं? हाँ देखिए ये भी तो बात है, हमारे मारवाड़ में गुजरात में हिंदुस्तान में कहते हैं डपोट संघ, कावद है कि नहीं? तो डपोट संघ की बात कर देता हूं फिर आपको, फिर प्रैक्टिकल दे दूंगा, ठीक है? एक आई एम ट्रेलिंग इन हिंदी, ओके, सो दैट आफ्टर यू विल आई विल टेल यू नेक्स्ट टाइम, सो टू क्रॉस आई विल मेक समथिंग कॉमेंट्री वेरी क्विकली सो यू विल अंडरस्टैंड। एक गरीब आदमी था, गरीब था, काम तो करता है लेकिन पैसे इतना नहीं मिलता है। तो उसकी पत्नी को उसने कहा कि आप ऐसा करो, यहां जो कुछ ये पैसे देता हूं काम करना, मैं तपस्या करने के लिए जाता हूं, भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान मेरे को बहुत कुछ पैसे दे देंगे। समुद्र के किनारे जाकर के भगवान का प्रार्थना कर रहा है, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव जी तो भोलेनाथ है ना, सबसे जल्दी वरदान कौन देता है, शिव ना।

ओह शंकर भगवान प्रकट हो गए जल के अंदर। बोलो भक्त क्या चाहिए, कि आप अगर शिव जी हैं तो आप अंतर्जामी सब कुछ जानते, मेरे को क्या कहते हो कि क्या चाहिए। प्रभु दे दीजिए, मैं लेने के लिए आया हूं और आप देने के लिए प्रकट हुए हो। अच्छा भक्त, तू मेरा भक्त है, ये शंख लेके आया हूं, ये शंख इतना चमत्कारिक है। ओहो प्रभु प्रभु प्रभु, हे दीन दयाल, क्या कहना है, आपकी माया, शंकर भगवान महादेव की माया है ये, क्या करेगा ये। अरे भगत, इस शंख की पूजा करना, गंगा जल से धो लेना या पानी से, कुएं का पानी से धो लेना, और अगरबत्ती लगाना, फूल पुष्प चढ़ाना, और फिर कहना कि हे शंकरदेव, मेरे को 1000 रुपये की आवश्यकता है, तो वो तुरंत 1000 रुपये का नोट आ जाएगा। हे शंकरदेव, मैं भूखा हूं, मेरा परिवार भूखा है, तो हमारे सभी के लिए बना बनाया कैटरिंग आ जाए, जैसे आ जाएगा। तो कहा कि हाँ वो आ जाएगा, कि ये प्रभु कृपा कर दी, कपड़े भी मंगा देंगे, सोना दागिना भी मिला, सब जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा बेटा। बस प्रभु यही चाहता था। भगवान शिव अदृश्य हो गए, और क्या हुआ कि वहां वो शंख लेकर के गांव की तरफ, घर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते 4-5 दिन के बाद, आइए 4-5 दिन के बाद में कोई गांव आया, उसके बाद दोस्त था, अच्छा दोस्त था, मित्र। भाई देखो, कभी परीक्षा जब भी होती है कि मित्र वास्तव में मित्र है या नहीं। हमारे ग्रंथों में कहा है, धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकयों चारी, धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकयों चारी। अरे एक मित्र की परीक्षा जब होती है, नारी की परीक्षा जब होती है, धीरज की परीक्षा जब होती है, कि हम किसी न किसी संकट में हैं, तो दोस्त के वहां गया, तो दोस्त कहा, अरे भाई बहुत समय से आए, क्या बात है, कहां चले गए थे, कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान शिव मिल गए। अच्छा शंकर दादा मरी गया क्या? मरी गया बापू, तुमने सु गया, शंकर दादा ने सु कही है, लाडवा खवाड़े शंकर दादा बहू। अच्छा, अरे ऐसे ही है, देवी देवता क्या करते हैं, देंगे है क्या? अरे शंख दिया है कि बताओ। हे शंख भगवान, हमारे मित्र के घर के अंदर सभी मिलकर के 8 और मैं 9, सभी के लिए अच्छा बढ़िया ताजा स्वप्न भोग थाल में पुरसा हुआ लेके भिजवा दीजिए। आ गया, अरे वाह, कपड़े मंगा दिए, आ गए, 50,000 मेरे मित्र को देना चाहता हूं, आ गए। मित्र कहता कि हाँ भाई, ये तो चमत्कारिक चीज आ गई। भोजन किया, सो गए। अब वो रात को नींद नहीं आ रही है, किसको? मित्र को, कि मैं कैसे करके उस शंख को मैं ले लूं। गया दूसरे दोस्त के पास, कहीं रात को दुकान पे गया और एक इतनी साइज का एक शंख लेके आ गया। आकर के वो थका थका था वो भगत, तो क्या किया उसने कि उसकी थैली में से वो असली शंख को तो निकाल दिया, और वो जो नकली से लेके आया उसको उसके धोझोली में डाल दिया। 10-20 घर का वहां शंकर भगवान के दिया हुआ शंख को वहां टेबल पे रख करके पूजा करी। हे शंख भगवान, हमारे भाई बहन जितने सभी खड़े मेरे गांव के, सभी को पहले भोजन करा दो। कुछ नहीं, अरे शंख भगवान कराओ ना, क्या कराए। और वो इतना निराश हो गया, वहीं से शंख को लेकर के गया समुद्र के किनारे, और शंकर भगवान को कहा, ये तेरा शंख मुझे नहीं चाहिए।
भगवान शिव ने कहा, अरे मेरा भगत, मेरे भक्त को दुख हो रहा है, भगवान नहीं चाहता कि भगत दुखी हो। शंकर भगवान प्रकट हुए, वापस बोला, हे भगवान भगत, क्या मुझे नहीं चाहिए आपका संक? अरे बेटा, तेरा संक वो चुरा गया, तेरा दोस्त असली उसके पास है, नकली अंदर डाल दिया। तो मैं क्या करूं अब? क्या करे क्या, मैं दूसरा संक देता हूं। अरे वो क्या करता है संक? अरे उसमें तो चमत्कार डबल है बेटा। कि वो क्या है भगवान, कि मांगना 1000 रुपया तो वो कहे 1000 से क्या, 1 करोड़ ले लो ना, अभी बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, लेके जाओ, लेकिन सावधान, देता कुछ नहीं है, वो केवल बोलता है। शंख बोलता है 1000 रुपये की जगह 1 करोड़ रुपये ले लो, 1 ड्रेस की जगह वो कहता 10 ड्रेस ले लो। के लाओ देओ कि क्या धक्का दे, धक्का को समझते हो, किसी को धक्का देना ना, अरे तू क्या नहीं दे रहा है कि नहीं, मेरा नाम है डपोल संत। अब वो लेके गया वापस दोस्त के पास, गया रात्रि विश्राम किया। अरे दोस्त का कैसे आ गया इतना जल्दी? बोला कि भाई इस बार तो एक चमत्कारिक चीज और मिल गई। अरे वो क्या है? अरे मांगे 1 और दे अनेक। कि यह ऐसे कैसे हो सकता कि देखिए, हे शंख भगवान, आज हमारे घर के अंदर 10 किलो सोना आ जाए। तो भगवान शंख देव कहते, अच्छा भक्त आशीर्वाद है, लेकिन 10 किलो से क्या होगा, 1 टन सोना ले लेना, ले जाओ 10 सोना आ जाएगा। कि बस बस बस बस इतना ही चाहता था भगवान, उसको दे दिया। अब वो कहता कि ये संख बढ़िया है। दूसरी दुकान पे गया लेने के लिए, तो बोला कि अब तो कोई संख है ही नहीं। तो उसने क्या किया कि जो वो दूसरा पुराने वाला संख था उसको तो उसकी झोली में डाल दिया, और ये नकली संख आया वो उसको दे दिया। अब दूसरे दिन वो तो चला गया। दोस्त ने कहा, हे शंख भगवान, मुझे 10 किलो सोना चाहिए। क्या 10 किलो के 1 टन ले ले भाई? कि हाँ दीजिए। कि क्या धक्का दूं? अरे ये क्या है? कि ये क्या, मेरा तो यही काम है मुंह से बोलना, देना नहीं है। तो कहा कि तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम है डपोल संघ। तो तब से डपोल संघ बना, खाली खुली खुली बातें करता है, वो कुछ नहीं करता, क्यों साहब जी? डपोल संघ। तो डपोल संघ जो था आ गया, चला गया। तो इस प्रकार से धर्म धीरज मित्र और नारी आपतकाल प्रकहियों चारी। तो जो हमारे धर्म की रक्षा करने वाला है, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में आपके जोड़ा हुआ है, ये सब उस समय उनकी परीक्षा होती है, नहीं तो परीक्षा नहीं होती है। साथ ही साथ अब छोटा सा योग का अभ्यास करा देते हैं, ठीक है ना? कराऊंगा जरूर, वो मैं डपोल संघ वाली बात नहीं करूंगा अब। ऑलराइट, सो वन पुअर मैन टोल्ड हिज वाइफ, यू स्टे एट होम, आई गो समवेयर एंड डू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी एंड गॉड विल गिव मी समथिंग, वट एवर आई विल आस्क गॉड विल गिव एंड आई विल कम एंड बैक। सो he went to the beach, was sitting near the ocean, and he was singing Shiva's name, Namo Shivaya, Namo Shivaya. Shiva appeared, said, Bhakta, my devotee, bless you, what you want? He said, I want money, I want this, I am very poor. So Bhagavan said, okay, I give you these coins. And whenever you want something, tell this coins, make puja, clean, flowers, incense, etc. And then you will prayer and he will give you everything, money, food, cloth, anything. Thank you, Lord. Thank you, thank you. He went. On the way, he had one friend. He stayed overnight there. And what he told the friend, what is this?
So in the night, the friend

और दो। अब अंगुलियों को कंधे पर रखिए यहां और केहुनियों को ऐसे जोड़ दीजिए और इसको रोटेशन करिए, घुमाए, एक श्वास लीजिए ऊपर और श्वास छोड़िए।

और दूसरी तरफ अब इधर ऊपर से नीचे द सोल्डर ब्लेड शुड टच. वेरी गुड. बस हैंड्स डाउन. तो ये 10-10 बार करना है, 10 बार ऐसे और 10 बार ऐसे. अब धीरे धीरे ऊपर देखिए, श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने थूड़ी को सीना पे लगाइए. टच योर एंड कम अप. टच द चिन टू द चेस्ट. And inhale up. Good. 10 times. Swas lena, sir ko dekhi upar aur swas chhodte hue Jalandhar band. Akashi mudra aur Jalandhar band. Bahut acha, bahut hi acha. Ab पैर जो लंबे किए हुए हैं कुर्सी पे बैठे, थोड़ा पैर और ऊपर लंबा कर दो और अपने पैरों के अंगूठे और अंगुलियों से इनको ऐसा पकड़ने की कोशिश करो रूमाल को. कॉन्ट्रैक्ट योर टोज एंड रिलैक्स द टोज स्लोली. कॉन्ट्रैक्ट द टोज एंड ये इसमें बहुत सर्कुलेशन हो रहा है पैरों के. किसी लोगों को एडी में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये सब चला जाएगा, दर्द भग जाएगा कहीं. एक दो, वन, अंगूठा पकड़ो, अंगुली पकड़ो, वो सब. टू, वन, टू. अब एक स्ट्रेच योर टोज टूवर्ड्स द फ्लोर इन द फ्रंट ऑफ यू एंड इनहेल. एक्सहेल एंड इनहेल. इसको भी 10 बार. इसके बाद पैर अलग अलग और अंगूठों को, पैरों के अंगूठों को जोड़ दीजिए. अब इस एक सर्कल बनाइए. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. Other direction, one, two, three, four, five. बहुत अच्छा. पैर पैरों को जोड़ दीजिए और धीरे से हाथों को ऊपर उठाइए. एक और धीरे धीरे आगे झुकिए, जितना झुक सके, अंगूठे पकड़िए पैरों के जितना जा सके और इनहेल, श्वास लेते वापस ऊपर और हाथ दोनों नीचे. एक, श्वास लीजिए. दो, श्वास निकालिए. तीन, श्वास लीजिए ऊपर. चार, श्वास जोड़िए. अब पीछे झुकते हुए मुट्ठी बांधिए, जैसे नैया को, नाव को चलाते हैं ना. एक,
दो, चार, स्लोली पांच। अब हथेलियों को ऊपर रखिए, द पाम्स फेसिंग अपवर्ड, हैंड्स नियर द नीज। जो एक मुट्ठी बांधिए, खोलिए, दो, यस, नाव को चलाते रहिए, क्योंकि अपने गणपति बापू मौर्या इनको बस समुद्र के अंदर में स्नान कराना है, जल समाधि हो गया बस। हरिओम। जितना धीरे करेंगे उतना फायदा ज्यादा रहेगा। उसका एक उदाहरण बताता हूं। आप का हाथ ऐसे पकड़िए, देखिए अपने हाथ को, देखिए रेखा, देखिए कितनी सुंदर है, वाह। अरे महाराज जी, इसमें तो पैसे पैसे लिखे हुए हैं उनकी रेखा में। अरे वाह। अब इसको बंद करें और खोले, मुट्ठी को बंद करें और खोले, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आया। वह देखो, खाने का बढ़िया हो तो मजा आता, खाने का नहीं तो ठीक है, जंक फूड है, पेट पेट में डालते। क्वालिटी भोजन का वो है, जितना चबाओगे उतना स्वादिष्ट लगेगा, और जंक फूड वो है, जितना चबाओगे तो उल्टी होने लगेगी। इसलिए मुंह कहता जल्दी पेट में डाल दे तू। तो अब ऐसा देखिए हाथ को, लुप्त या पाम, सीधा बैठो ही, हाँ, नाउ स्लोली क्लोज योर फिस्ट, थंब इनसाइड, पकड़ दो उसको, होल्ड योर फिस्ट स्ट्रांग एंड विद राइट हैंड होल्ड द रिस्ट, ओके, टाइट द रिस्ट, हाथ पकड़ा हुआ है, स्टे लाइक दिस। And now only open the palm, the left hand, and look to your palm and tip of the fingers. But right hand is holding your wrist. देखिए आपका हाथ बिल्कुल looks like a pail. अब देखिए हाथ को और देखिए, अंगुलियों को देखिए, look your fingers, look your palms. And now release your right hand and look to palm, what's happening? फर्क पड़ा? अब इस हाथ को और इस हाथ को देखो, कितना फर्क है भाई। अब देखते हैं, इसको भी करेंगे तो ये भी तो नाराज हो जाएगा, रात भर कहेगा कि इसी को क्यों आपने। तो इसको भी ऐसा करके मुट्ठी को बांधिए टाइट, और लेफ्ट हैंड से पकड़ देते हमारे ये हाथ इसको।

0: कलाई को पकड़ लीजिए, रिस्ट को पकड़ लीजिए, स्ट्राइट वेरी टाइट एंड ओपन द पाम एंड लुक टू योर हैंड. बहुत अच्छी रेखाएं हैं, भाग्यशाली हो, लंबी उम्र है, पैसे खूब लिखे हुए हैं, लेकिन लिखे हुए कहां है उसको यहां तो लाओ. हाँ, अब कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाम्स एंड टिप ऑफ द फिंगर्स. एंड नाउ व्हेन आई से थ्री वन देन यू विल रिलीज. थ्री टू वन. हाथ को ढीला छोड़ दो, लाल और लाल इसी में है माल. सो देखिए अब आपके हाथ जो हैं कितने अच्छे लग रहे हैं. ठंडी में कार को चलाने से पहले हाथों को ऐसा ऐसा कर दीजिए तो गर्म हो जाएगा. यस, डू इट लाइक दिस. जो ऐसा करोगे तो क्या था आपके हाथों के अंदर में एक चमत्कार बता देता हूं. चमत्कार बता दे वहां क्या आएगी तो महाराज ने थोड़ा बहुत चमत्कार करें. ठीक है, चमत्कार को
1: नमस्कार.
0: चलो अब थोड़ा चमत्कार देख लेते हैं. हाथों नाउ मिरेकल. नाउ यू विल हैव ए मिरेकल. यू कैन सिट स्ट्रेट इफ यू वांट. सिट इन योगा पोस्चर, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, एनी आसन वेर यू फील कंफर्टेबल. अब ये दोनों हाथ जो हमारे हैं, लुक बोथ पाम्स. हाँ, दोनों हथेलियों के अंदर में थोड़ी रेखा अलग अलग है. अच्छा, एक तरफ तो धन आता है लेकिन दूसरी तरफ वो चला जाता है. अरे हाँ, वो तो जाना चाहिए. लक्ष्मी चंचल है. पानी तो चलता भला पड़ा गंदेला होए. वाह भाई वाह. अब ऐसे करिए हाथों को. अब आपके अंगुलियों के ऑन योर टिप ऑफ द फिंगर्स समथिंग इज टिकलिंग. जस्ट लुक लाइक दैट. नाउ आई वॉन्ट दैट यू हैव 1000 टाइम्स मोर टिकलिंग और लाइक ए नीडल्स गोइंग थ्रू योर पाम्स दैट वी शुड Fold your hands. Fold your hands. And now rub the palms

गुड अब ऐसे 1 इंच दूर रखो, अब ऐसा करिए, नीडल मूव होगी नहीं कि नहीं, ऐसा कर रहे हो तो भी कि जैसे सुई नीचे लगी हुई है, और ऐसा करिए धीरे धीरे, वो प्रेशर आता ना मैग्नेट, और अब क्लोज योर फिस्ट, हैंड्स डाउन एंड कम अगेन अप एंड ओपन पाम, देयर इज नो मैग्नेट, वेज गॉन। सो दिस मीन्स हमारे हाथों का ठंडी वगैरह होती है तो गर्म कर सकते हैं, और अंगुलियां वगैरह सभी दर्द हो रहा है तो ये एक्सरसाइज दी बेस्ट है। कहीं पेट में या कंधे पे या कहीं दर्द हो रहा है तो इस सेल्फ हीलिंग पावर करके हम यहाँ रख दें तो हमारे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, या कहीं दर्द है तो वो हम हमारी एनर्जी को वापस वहां भेजते हैं। तो इनहेल एंड यू गो इन विद द एनर्जी, एक्सहेल एंड टेक ऑल द टॉक्सिजन्स एंड द पेन आउट, सेल्फ हीलिंग। तो बस आज तो इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सेशन इज ओवर, इट वॉज 1.5 आवर।

धन्यवाद कृष्ण आचार्य। अब वो क्षण आ गया है जब हम स्वामी जी को सुनेंगे। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी के प्रवचनों से हम आशीर्वाद से हम लाभान्वित होंगे। मैं परम आदरणीय गुरुदेव को वंदना करता हूँ कि वो पधार कर हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आशीष प्रदान करें। आदरणीय

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम हमेशा कहते हैं, लेकिन कहना चाहिए, जानना चाहिए, जब इस विषय में आना होता है। हमारे आराध्य भगवान

दीप नारायण महाप्रभु जी, देवपुरी जी और आराध्य भगवान माधवानंद जी। माधवानंद जी आप जानते हैं सभी, आप जानते हो ना? यस, जानते हो? कितना जल्दी में चले भूल गया। स्वामी माधवानंद जी बड़ी खाटू नागौर और राजस्थान, सारा विश्व और यहीं इसी शहर में प्रभु और ये माता जी के पिताजी वो विराज थे। महान ईश्वरीय माधवानंद जी ने सारे विश्व के अंदर सब कुछ दे करके मुझे दिया। और मैं जब गुरु जी के यहीं था और मुझे विदेश में चला गया, जब तक मारे तक डरती हूँ हती गुनी, जहाँ तक मैं उस गया उस देश के अंदर, जब गया देखा, लेकिन जो भी है वो सब खाने वाला मांस मदिरा, जो भी देश है अलग, भले ही कोई जो ना आदमी ठीक नहीं खा सके तो वो है नहीं। तो मेरा जाना था, मैंने क्या करना है, तुम्हें योग का 3-4 देशों के बाद में, तो कि योग करते हैं लेकिन मांस खाना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, और आपको भी नहीं करूं दूंगा। अगर आप योग करना चाहोगे तो मांस मदिरा दे दो, छोड़ दो, और तो मैं दूंगा। तो कोई 2-3 जना ने के हाँ, 4 दिन को हाँ, 1 साल। तो हमारे वेदानंद महाराज, योगेश जी, ये मैं शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा। तो करते करते आपको क्या कहूँ कि जो जितना हमारे यहाँ इंडिया में, यहाँ पर राजस्थान में, जो पहले सब मांस नहीं खाते थे, अब हमारे राजस्थान से आगे जाकर के दूसरे हमारे सब देश के अंदर हैं, मैंने उन सभी को इतना करा दिया कि मांस मदिरा कुछ भी नहीं खाएंगे। वो आज हमारे वहां ज्यादा है। आपने कहा आप पधारे थे और बाहर काम गए थे, आप गए थे जाके, हाँ वो भी रहते, हाँ सर साहब, तो वैसे जाकर के उनको करने का क्या करना है। एक नंबर वन, नंबर टू, शॉर्ट एंड स्वीट। सुबह उठते हैं आंख खोला नहीं, जने वा आंख खोला नहीं कठे पर के उठ जने, तो एक शब्द को क्या कि मेरी आंख में मानव हूं, मनुष्य, मैं एक मनुष्य हूं। उठोगे ना आगे खोलो पहला उसी समय, हाँ कि मैं मनुष्य हूं, बस इतना ही। उसके बाद में पगे नीचे देते हैं तो कहते हैं माँ, माता, मैं इस पृथ्वी पर पग डोल गई, माता जी है, माँ है,
दादी हैं तो उन्हें तो क्यों, और एक गीपरी माता जी वगैरह गीपरी तो भी माता जी को कहना था कि हे माँ जी, अब माता जी नहीं है लेकिन पृथ्वी माता है, सारे विश्व के अंदर मातृ हम। उसके बाद उठ के जाकर के पानी पीने के पहले सबसे ज्यादा है, जल जो है जल सो जगदीश, जगदीश जो जग सर्विस जगदीश भगवान जो है। तो अपने अगर देखें एक बार के पानी कितना है, तो कितना पानी है, वृक्ष वगैरह जो कुछ है पृथ्वी पे जो भी, तो जाकर के जाता है ऊट के जवानी जन यूं हाथ में थोड़ा पानी ले लो, जावा पानी कटने पानी लेवा करना ऊट गए, बस एक एक ही दो तीन बूंद बूंद, और वो बूंद उसको देखते कहेगा कि मैं सर्वत्र सबके अंदर मैं हूँ, और वो लगते ही सारे शरीर के अंदर में जैसे कोई किसी को इंजेक्शन लगा दे नहीं तो जोर जोर करे नहीं, वैसे ये जल जगदीश जो है ऐसा करते पूरे शरीर के अंदर हो जाएगा, तो देखो कि आपको बहुत अच्छा रहेगा सबको, और पृथ्वी वो वगैरह सभी जो है। अब मनुष्य के जब घर पे रहते हैं सोते हैं तो वहाँ पर जानवरों को सोते समय माता पिता को बच्चों को उस कमरे में जानवरों को मत टिकना, और देखिए कि गाय के बछड़े का तो हम लोगों ने छोड़ ही दिया, और एक कुत्ता जो है वो कुत्ता ने लिसेते लेने कुत्ता ने कहने सोए ने हुए, हाँ हुआ घनो बड़ी अच्छी बात नहीं, कुत्ता भी तो है ही है, लेकिन वो कुत्ते ने जो वो धनी धनी तो बैठे उठे हुए ने वह कुत्ती बने कहते बीच में, या वो भावनी माँ उठे घरे में तो कुत्ते वो लेने जावे, देख लीजिए वो कुत्ता है अच्छा है बहुत अच्छा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो तो वहाँ पर भी उन लोगों का इतना हो रहा है, लेकिन मैंने हम उनको कह दिया कि एक तरफ खिलाओ कराओ सभी, लेकिन उससे आगे वो नहीं जा सकता है। और उसके बाद में मुसलमान बहुत अच्छे हैं, वो उसकी माँ को बाप को क्या शब्द में बोलते हैं, कहीं कहे मुसलमान कहीं कहे, उन्होंने उसकी माँ को उसके बच्चों का जो क्या कहीं कहते हैं उन्होंने है? तो अब्बा है ना, हाँ तो वो अब्बा है ना, अब्बा अब्बा, तो वो उनके बच्चा बच्चे सब उसका वो करते हैं, वेरी गुड। अब ऑस्ट्रेलियन, अब जो ऑस्ट्रेलियन का कहना हारा मैं तो घर में बैठे ही रहूं, तो वे है तो वो उसका ही ऐसा जो उनके गांव में वह कहते हैं वो करते हैं, तो हाल तक वो वैसा क्या कर रहे हैं, और फिर और दूसरा है तो एक बता दूं कि अपर हिंदू हमारा हिंदुस्तान के, अब हिंदुस्तान के जो है कहीं केवं माँ केवं और कहीं केवं पिताजी कहो टावर हो गया ये कह रहे, अब आपके यहाँ बता दो मेरे को इस हिंदुस्तान के अंदर में मेरे विदेश में जाने से पहले तो अच्छा था, और अब वहाँ से चले तो आप बता दो आपके बच्चों का कहीं के बाद बोले चोरी भी हो सारा भी हो कहीं कहेगा टाबर टाबर खेत हैं

और माँ ने कहीं के वे ने बाप ने कहीं के वे पता नहीं मने मन तो ठाई को नहीं, मैं तो इतना कोई को नहीं है कि नहीं। तो आपके बच्चे का आपका नाम आपका क्या हमारे हिंदुस्तान का नहीं है, हमारे भगवान के नहीं है, और वो भी उतना उनका वो वैसा नहीं है, तो क्यों आपके भारत के अंदर हम सब छोड़ दिया। ठीक है कि हम हिंदुस्तानी है अटे, लेकिन मेरे विचार में जो कहता हूं कि आप नहीं रह रहे हो, नहीं रह रहे हो। आप बोलते हो ना सभी को, कौन कौन बोले चावरा ने बच्चे ने। अब इसके पास में करने से मैं क्या करूं। मेरे को विदेशी कहते हैं कि महाराज जी आप ऐसे करते हो, ये क्या हो रहा है। अब दूसरा है कि योगा, योगा योगा जो है मेरे योग का जो है कि सारे विश्व के जितने भी हैं वो सभी योगा उसका नाम कराता है। तो ऐसा है कि जो भी हमारे साधु संत जो योगा योग का करते हैं ना, तो कोई उस गुरुजी का उनका नाम उसका कराएंगे, उनके पिताजी का वो गुरुजी का नंबर है, तो हमारे साधुओं का और सभी का उसके पिता का जो भी है वो उन्हीं का नाम देंगे, जैसे माँ उसी के बेटा बेटी का नाम देंगे। अब वो उसको तो छोड़ दिया। अब जितने योगी हमारे हैं, हमारे योगियों का मेरा, उन सबको कैसा कर दिया कि छोड़ दिया, और इसके अंदर में यह भी कर दिया कि दो शब्द नहीं करना है कि अभी जो योग वाला काम करेंगे कि दो शब्दों से नहीं करेंगे कि क्या कि मांस और कोई और मदिरा, ये हम नहीं बताएंगे कि नहीं करेंगे। साधु कहते हैं यहाँ कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन उनको नहीं कहूँगा जो करो या कर मत करो। और मेरे जो योग का कराया है आज तक मेरे पास में मेरे टावर बैठे हैं यहाँ 5 साल तक, उनके बच्चे उनके आगे करके उनको सबको अपना हिंदू हमारा बताया है, ऐसा अच्छा बताया, आश्रम बताया है। तो आप ऐसा मत कहना, मेरे को दुख मत कराना मुझे, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि योगा इन डेली लाइफ एंड इस योगा करते समय मांस मदिरा ये सब छोड़ दिलाएंगे, और हमारा भारत जो है तुम्हारा भारत भारत ही है और रहेगा। लेकिन अभी ये जब तक आपने इन बच्चों का अभी नाम क्या कर लिया और क्या कराया और कुत्तों को हाथ में लेकर के रह रहे हो, तो आई थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगेगा। कुत्ता अच्छा है, बढ़िया है, उसको उनकी जगह रहनी होती है। और आप भी तो एक गाय का बच्चा आता है ना, तो घर में थोड़ी एक लोग एक 5-10 दिन के लिए एक वैसी अपर गाय की बछड़ी है ना, कितनी अच्छी है। गाय की पूजा होती है और कुत्ता की पूजा करती है। तो हमारे भारत के अंदर क्योंकि देखिए कि आपको कहता हूँ कि जितने विश्व के अंदर में सब कुछ जो हो रहा है खाना पीना बोलना सब, लेकिन केवल हिंदुस्तान जो है सनातन धर्म है वो सब कितना प्रार्थना करते हैं, जो ये करते हैं, सब कुछ करते हैं, कई साधु संत करते हैं, बहुत वही बस, इसके अलावा और कोई है ही नहीं संसार में, कल कोई नहीं है। हमारे लोग जो गुजरात में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, हमारे इस गांव के घना हमारा बैठे लोग भगे बटे जाओ ऐसा जब वेरे वे काम करे, बहुत करे, पूजा करे हमारे लोग वाले। और जो पहले वो मूसा खाने वाले थे ना, वो भी छोड़ दिया कट्ठे अमेरिका में हमारे लोग कि अरे माँ ऐसा, तो वहाँ से छोड़ दिया, कहाँ से यहाँ से, और वो जो है क्या हो रहा है। तो ये जो हमारा रहना देना, तो मोदी जी साहब ने बहुत बड़ा
कराया है, कर रहे हैं और उन सभी का, इन सभी का वापस सनातन के अंदर में, सनातन सत्य सनातन, तो उसी तरह मेरा योग का अंदर मेरे जाने से, पर एक एक थोड़ा और कह देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत खराब है, खराब नहीं सॉरी टाइम कमी है। तो फिर किस क्या किया अभी उस करीब सारी ज़्यादा से ज़्यादा तो अब 20 साल या थोड़ी सी और। तो फिर मेरे पास में मेरे विदेशी लोग जो जा कर के गए कि स्वामी जी ये विदेशी में हमारे यहाँ गायों का वो रखते हैं, कैसे रखते हैं और पानी कैसे, और तो 5-6 आदमी आया, गायों ने देखा और अटल तो गांव में है, गाय है ही नहीं, कुत्ता है ही जगह, तो सॉरी तो वहाँ पर देखो, ये बताऊँ आपको, कुछ में आपने देख लिया हो और दूसरों को नहीं देखा है। तो वो क्या कि 5-6-7 बार में गए तो वहाँ एक गाय का बच्चा आ रहा है, आता है, तो दो आदमी बैठा कि भाई गाय है और गाय बच्चे निकाल लिया, आता है जैसा अपना है। तो वह जो एक बच्चा आयो गाय रो कडायो तो वो टोकड़ी नहीं है तो टोकड़ो हो, देख लेना आप इसी को, और तो टोकड़ी है तो वो टोकड़ो है, तो वे हैं दे दिया कुदायो यूं खाँचियो एकदम नहीं क्यों गणा रही हूँ इसको दियो नहीं करे गाय को बिच्छी गाय हमको दुख बहुत दुख कर रहा है अभी बहुत दुख कर रहा है। तो उसमें क्या किया कि वो लोग बैठे थे तो उसको जा कर के 5-6 आदमी दूसरे हैं ना वो काम करने वाले, वो क्या करते हैं कि वो बकरे का गाय का बछड़े को काट करके खाने लग गए। तो उस समय वो सभी मेरे विदेशी लोग थे, मेरा नहीं, तो उन्होंने कहा कि बाप जी मैं नहीं खाऊंगा, नहीं करूंगा, तो क्या कि हम कोई जानवरों को नहीं मारेंगे। उन सभी ने कराया कि कोई जानवर का गाय का भैंस का दूध वगैरह नहीं लेंगे, गाय का दूध रहेगा, भैंस का भैंस रहेगा, बकरी का बकरी रहेगा, कुत्ते का कुत्ता रहेगा, वो उनका है लेकिन उसका पानी उनका मत खाओ। तो अभी देख लो मैं करा रहा हूँ, और नहीं तो हम मैं तो हाल खा रही हूँ अपना दूध खाऊँ उन्हें अपन है, लेकिन मेरे से ज़्यादा मेरे लोग अमेरिका के अंदर और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, कनाडा, एवरीथिंग इन माई एवरीवेयर, तो वो लोग हैं उसको क्या कहते हैं वेगन का नाम होगा आपके आपके पास में कोई, तो वो क्या है कि गाय का दूध, घी, मक्खन नहीं खाएंगे, मधुमक्खी का वो भी नहीं खाएंगे, गाय का उद्गा है जो वो है, और जो भी जानवरों का है नहीं वो उसका हम, जो जानवर जो है जानवर खाने का उनका बच्चा है, बस उनका ही है, उनके हमें उनका नहीं हम खाएंगे। और क्या खाओगे कि वृक्ष के पास में जो भी है बढ़िया से बढ़िया है हमारे, तो केवल इसी को करो। तो आपने देखा नहीं वेगन है ना, वेगन तो वेगन उसके अंदर में आपने गांव में अट्ठे भी हैं 3-4 जगह में कटे, और ऑस्ट्रेलिया में ना दूर नज़दीक में जो है दूसरे पे है, तो वहाँ पर जो विदेशी यूरोप के हैं वो या अमेरिका में रहते हैं इधर रहते हैं वो वेगनर है, वेगनर। और जब मैं कहता हूँ आप बोलो, आप लगा देना और कह देना कि क्या हुआ है, जब हमारे यूरोप से हमारे भारत के लोग हमारे यहाँ आते हैं और जो दूसरे लोग वो भी यहाँ आते हैं, तो वो कहते हैं सब ज़्यादा से ज़्यादा मांस खाने के लिए कहते हैं, और वो वेगन वाला वो है नहीं, वो कहते कि नहीं नहीं हमारे पास मांस नहीं,
हमारे को तो बेगा।

0: तो वो करने से मेरे को सभी क्या उन लोगों ने भी कि महाराज जी महेश्वरानंद जी आपने क्या करा दिया और क्या करा रहे हो, उसको थोड़ा वापस लाना है। हमारी माँ है नहीं, वो माँ माँ रहेगी, बेटा रहेगा, सब रहेगा, मांस मदिरा नहीं कराएगा। तो प्रार्थना करो तो शाम को बच्चे को उठ करके, आठ को बच्चों को उठ करके प्रणाम ना करें, मंदिर में जाके बैठे सभी करे, गणे करो जी, आए बहुत ऐसी बात नहीं है, खूब जो करते लेकिन खूब बार रहता ही है। तो इसीलिए योगा इन डेली लाइफ, तो योगा इन डेली लाइफ का मतलब सारे विश्व के अंदर, सारे विश्व में। और अगर मेरा कहेंगे योगा इन डेली लाइफ तो कहें कौन है, कहाँ से है, कि आपका हिंदुस्तान का आपका है कि वो है, तो मैं तो कहूँगा आपका हिंदू हिंदुस्तान का है, हम करेंगे तो मेरे करेंगे, मेरे को दे देंगे नहीं। इसलिए मैंने सभी को करके कि योगा इन डेली लाइफ, एवरी डे प्रैक्टिस योगा, एवरी डे प्रैक्टिस योगा, जैसे करना अब ऐसा ही भी देख, अगर वो योगा इन डेली लाइफ वाले लेकर है तब तो आपको अच्छी तरह करना पड़ेगा। और दूसरे क्या कि वो कोई आता है 5-10-20 हटे आवे, तीसरे दिन फिर आवे कोई, तीसरा पर जाए, आगे कठू आ जाए, तो वो ये अभी मैं देख रहा हूँ, आई नो दैट, बट ये महाराज जी है ना भाई जी, इनके अच्छा चल करा है, इन्होंने किया है, बहुत अच्छा करा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा लोग नहीं आवे नहीं जने कोई करे दूजों ने वन घुमा गाल दे, लेकिन मेरे अगर वो कोई आता है, अरे टाबर अटारो है ने कह 10 साल की वोट देखा बन जाओ किताब। तो इसी प्रकार मेरा यही है कि योगा इन डेली लाइफ, सारे विश्व के अंदर भगवान के पास में और जानवर की रक्षा करे, हमारे भारत की रक्षा करे, हमारी भारत की रक्षा करे। तो हमारे जानवर, हमारे माता पिता है, बच्चे हैं, वो जानवर वालों का अंदर मत चुलाओ, और उनको बच्चे हैं वो इन्हें उन पर करा दो, वो करो कोई मत करो, लेकिन वो एक घर के मार्ग में सामने सो करके कुत्तों के और कुत्तों के बकरी के वास में, या फिर एक बिल्ली है थी, बिल्ली भी तो खूब होती है, तो वो है उनके लिए दो, लेकिन एक घर के अंदर में जो है वहाँ नहीं जाना देना चाहिए। बोल श्री दीप नारायण भगवान की जय, देवाधिदेव देवपुरी श्री महादेव की जय, माधवानंद जी भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, मात पिता गुरुदेव की जय। ओम शांति शांति शांति। हमारी भारत, हमारी भारत, हमारी भारत।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद गुरु जी महाराज की जय।
2: He has established Vishwa Guru Deep Ashram Shodh Sansthan. He is working hard to bring to light the unpublished work of great Sanskrit scholar Pandit Madhusudan Ojha. Now, I humbly request Mahamandaleshwar ji to propose a vote of thanks.
3: Thank you. पहले मैं हमारे प्रोफेसर कैलाश चतुर्वेदी जी को बुलाता हूँ थोड़ा 2 शब्द का। एक
4: मंचस्थ विश्व गुरु स्वामी महाराज और उनके वट वृक्ष के नीचे बैठे सब लोग, सामने विराजमान देवी देवताओं, मेरे को आ चुके हैं, या बड़ा टाइट प्रोग्राम था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कल अकस्मात मैं फेसबुक पे बैठता हूँ और मेरे हजार सैकड़ों मित्रों ने मुझसे प्रश्न किया था कि भाई मोबाइल

0: spirituality. So there is connected with spirituality, this Professor Mahesh Dadji knows, and we have on the Virendraji Bansal. He actually started as an artist, and now he has a collection of 20,000 Pandulipis, the manuscripts, 20,000 old manuscripts, and when you go to his museum, unknown number of paintings, old paintings, old things and so on. So we are thinking that also he joined this conference. So with this word, I would like also to invite all of you to, whenever you have time, to come to visit ashram, visit Om Ashram, and wish you all the best. Sridip Narayan Bhagwan Ki Jai.
1: I am honored to now request Dr. Ravi Juhiwal, Chairman, Apex University, to kindly convey our heartfelt gratitude to Maharaj Ji and all eminent scholars present here.
2: परम पूजनीय आदरणीय स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज साहब, अपेक्स यूनिवर्सिटी आपके यहाँ पधारने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। आपके द्वारा योगा इन डेली लाइफ, पीस, हार्मनी, वेजिटेरियन के लिए जो भी प्रोग्राम पूरे विश्व के लगभग 3 से 4 हज़ार सेंटर में जो चलाए जा रहे हैं, वो वास्तव में अपने आप में हमारे लिए एक प्रेरणादायी है। आप यहाँ पधारे, आपने हमें यहाँ पधार के हमें अनुग्रहित किया, इसके लिए हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार, थैंक यू।
1: नाउ दैट टुडेज सेरेमनी कम्स टू इट्स कंक्लूजन, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्रोसीड फॉर प्रसाद एंड रिफ्रेशमेंट्स outside the auditorium. Thank you very much.
3: Kalyan Kalyan Mantri ke saath hum isko samapan karenge. Om sarve bhavantu sukhinah.

0: ओम शालाकुरुजी महादेव की
1: जय।
0: वादिदेव देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: श्रीदेव नारायण भगवान
1: की जय।
0: हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरुजी सद्गुरुदेव भगवान
1: की जय।
0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरुजी योगराज
1: की जय।
0: नंदीश्वर भगवान
1: की जय।
0: शिव शंकर भोलेनाथ
1: की जय।
0: हनुमा पार्वती
1: पते हर हर महादेव।
2: शिव भगवान।

0: सतगुरु भगवान की जय हो।
1: अच्छा बोल दो,
2: बोल दो मैं एक आध बोल दो फिर से
3: बताओ। थे
1: बोल दो,
0: बोल ले
3: नहीं
2: हाँ ये

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवनपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम।

0: दीपनारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद पुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमानंद स्वामी श्री महेश्वर सतगुरु देव की
1: जय।

0: देवेश्वर महादेव की
1: जय हो।
0: पूजन एक बोल दो,
1: पांच बज गया। मंगेश्वर जी नमो नारायण।
0: देवेश्वर महादेव की
1: जय हो। टाइम हो गया।

0: ओम बोलो श्री भगवान देव कृष्ण महादेव की जय।
1: एक ही टीम में आप एक ही तरह की टीम
2: मान पार्टी
1: मगर

ओम श्री अलकपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवनपुर जी महाराज की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरि ओम एंड गुड इवनिंग डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर वाचिंग द लाइव वेबकास्ट टुडे फ्रॉम द होली लैंड इंडिया राजस्थान जारन। एज विश्व गुरुजी हैज सम वर्क एंड ही इज इन अपस्टेयर्स सो आई स्टार्टेड टुडे। So, let's take for example, if we look around us in the nature and we just see a flower, in Pushpaji's garden, we see a flower and the flower is blossoming, it has a good smell. For example, we take roses or jasmine flower or any type of flower. When you look at it, it looks beautiful, but it takes time to grow. It's beautiful, it's white, it smells nice, everything's such so beautiful. So, how does a flower appear? You don't just sit in your meditation and say, flower, flower, flower, and it appears. It doesn't work like that. It has to be some expert who puts the seed in the ground, gives water all the time, and then it slowly, slowly grows as per to the nature. So not everything happens.

आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। देवाधिदेव श्री देवापुरीषा महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद।

जय देवाधिदेव श्री देवापुरी जी महादेवा की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट श्री परहंस श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। सबक मंडल की जय। Okay, one more. One. Satam Guru Rakhmat.

हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।

जय देवाधिदेव श्री देवापुरी जी महादेवा की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।

0: mondd, hogy mind áldottak vagyunk.
1: That we are all here together.
0: Együtt lehetünk itt.
1: And that we are here in the shelter of the Gurudev.
0: Hogy Gurudev hajlékában lehetünk.
1: Same time that he mentioned about 8.4 million different kind of lives.
0: Megemlítette a 8,4 millió létformát.
1: But finally we got a human life.
0: És annak a végén az emberit.
1: Human life should be very pure.
0: Az emberi életnek nagyon tisztának kell lennie.
1: You have to come to the God as pure you were.
0: Tisztán kell jönni Istenhez.
1: So he said we are lucky.
0: Azt mondta, szerencsések vagyunk.
1: And we are going to have some havan, yagya, puja.
0: Havanát, yagyát, pujját fogunk gyakorolni.
1: And so let's go what he said in short sentences. ठीक है, थोड़ा बोलना ताकि पूरा बताएं.
2: आप और सब हम सब यज्ञ और हवन पूजन के बारे में जानेंगे. यज्ञ को करने से परमात्मा के बहुत ही नजदीक आप और हम सब पहुंच सकते हैं.
1: व्हाइल मेकिंग द यज्ञ
0: यज्ञात वेक्सुंग
1: सेरेमोनीज वी विल हैव ए इजी एक्सेस टू गॉड.
0: Ceremóniák által könnyen hozzáférünk Istenhez.
2: जीवन में आने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, जितने भी उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उन सब को दूर करने के लिए शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर मंत्र और यज्ञ की एक विधि बताई गई है. अगर उस पूजन को, उस विधि को और उस यज्ञ को सही विधि से, सही प्रकार से अगर किया जाता है तो अपने जीवन की वो कठिनाइयां निश्चित रूप से दूर होती हैं.
1: इन लाइफ मेनी टाइम्स देयर इज अप एंड डाउन.
0: Életben सokszor fe és lefelé szállunk.
1: देयर आर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस. Different kind of situations.
0: Különböző körülmények, helyzetek vannak.
1: But through this, doing the yagyas, ceremonies, it will lead us to our destination.
0: Yagyák és ceremóniák által a célunkhoz érünk.
2: ये एक प्रकार का विज्ञान है. यज्ञ कुंड की जो गुरुदेव ने बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार उसका निर्माण होना चाहिए, और साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का मुंह माना गया है. उस मुंह के अंदर मंत्रों के माध्यम से जब अग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान की जाती हैं, तो अग्नि जो है वो उन आहुतियों को साक्षात पुरुषोत्तम परमात्मा के चरणों में अर्पित करती है, और आप जिस मनोभावना से वो आहुति देते हैं उस आहुति को भगवान स्वीकार करते हैं और आपकी मन की इच्छा पूरी करते हैं.
1: अकॉर्डिंग टू द दिस इज साइंस
0: टू द मैन
1: वैदिक साइंस
0: वैदिक टू द मैन
1: अकॉर्डिंग टू द वास्तु शास्त्र एज आई टोल्ड बिफोर ही मेंशनड
0: अ वास्तु शास्त्र szerint, ahogy ezt korábban mondtam.
1: Exactly the yagya ceremony must be done in proper measurement.
0: A yagya ceremóniát pontos mértékek szerint kell végezni.
1: And in the proper scale. East, west, north, south.
0: Megfelelő terjedelemben az égtájakat figyelembe véve.
1: And that fireplace for the yagya is like the mouth of the god.
0: Yagya tűzhely az olyan, mint Isten hegye.
1: And what the mantras is coming like from that supreme.
0: És a mantrák a legfelsőbbtől származnak.
1: And how you will think and you will offer your ceremonies there, that will become fruitful for you, liberating you.
0: Ahogy gondolkozol, amit ott felajánlasz, az gyümölcsöző lesz számodra, felszabadít téged.
2: शास्त्रों में बताया गया है कि देवता जो हैं वो मंत्रों के अधीन हैं, मंत्र जो हैं वो साधकों और ब्राह्मणों के अधीन हैं। अगर मंत्र की शक्ति के माध्यम से आप यज्ञ पूजन करते हैं तो देवताओं को निश्चित रूप से इस पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है और देव आकर के आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हुई चाहे सांसारिक हुई, इस जीवन की संपूर्ण कठिनाइयों को देवता दूर करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और शास्त्र और वेद पूर्ण रूप से सत्य है, सनातन है, और इस धर्म की मूल आधार स्तंभ जो माने गए हैं वो शास्त्र और वेद माने गए हैं, तो उनकी सत्यता पे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है।
1: The scriptures, the Vedas, Upanishad, etc. They're mantras which influences the devas.
0: Iratok, a Védák, Upanishadok, mantrái hatnak a dévekre.
1: Invite them.
0: Behívja őket.
1: And these mantras, this ceremonies is perfection by those scholars, so called the pandit.
0: Mantrák, ceremóniák, olyan tudósok, akiket panditoknak hívunk, azoknak a munkái.
1: Through their perfection, the devas, through these mantras which will be chanted, devas have to come from the astral world or heaven or whatever you call, to that place where the yagya is.
0: Az ő tökéletes munkájuk által a déváknak el kell jönniük a mennyországból vagy az asztrális síkról arra a helyre, ahol a yagya van.
1: And through that chanting of that mantras and presence of the devas, definitely it will help you, it will remove your negative energy, remove your problems, and it is a way to liberation.
0: Mantrák zengetése és a dévák jelenléte által elmennek a negatív energiáid, és a felszabadulás felé haladsz.
1: So this is not only just what we call a mantra chanting. It is the science, it is sanatan.
0: Ez nem csak egy mantra zengetés, hanem tudomány, sanatan.
1: It is eternal.
0: Örök.
1: Unchangeable.
0: Megváltoztathatatlan.
1: It is the truth.
0: Az igazság.
1: Is that scriptures.
0: Ez van az iratokban.
1: That granthas.
0: A grantákban.
2: ये जब अनुष्ठान या पूजा या मंत्र जब ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में अगर आप करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं तो इसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। आप अगर एक आहुति प्रदान करते हैं तो 1,00,000 आहुतियों का आपको फल प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु जो होता है वो धर्म के मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे आपको प्रशस्त करता है। तो ऐसे गुरुदेव की शरण में आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आप इस लाभ को अपने जीवन में प्राप्त करें, ऐसा मेरा और गुरुदेव के चरणों में आप सबके लिए मेरी तरफ से वंदन है, प्रणाम है।
1: सो सच ए अपॉर्चुनिटी, सच ए ओकेशन, सच ए सिचुएशन that such environment creates where this puja takes place, But if there is the presence of the Sadguru Dev, then one mantra's

0: your mantras benefit turns to you 100,000 times.
1: Az már önmagában
0: it is your, it is said mantras, it is said rishis, that is a science.
1: A rishik, a szentek azt mondták, hogy önmagában nagy lehetőség ezt a mantrát, ceremóniát gyakorolni, de hogyha Sadguru Dev jelen van, akkor egy mantra egy ahotta kimondásának 100,000-szeres ereje van, mert Sadguru Dev tanulja a mantrádnak.
2: Ek mantra ke madhyam se main apni vaani ko viram dena chahunga.
0: With his one mantra chanting, he is going to finished his speech.
1: Egy mantra zengetésével fogja befejezni.
2: Dhyana moolam gurur murti, puja moolam guru padam, mantra moolam gurur vakyam, moksha moolam guru kripa. Dhyan karne ke yogya guru ji ki pratima hai, guru ji ki murti hai. Dhyana moolam gurur murti, पूजा के योग्य सदा सर्वदा उनके चरण हैं. पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र के समान उनके द्वारा दिए जाने वाले जो वाक्य हैं, जो प्रवचन हैं, जो आप सबको प्राप्त हो रहे हैं, वो मंत्र के समान निश्चित रूप से आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की शरण में हैं. मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, और मोक्ष के समान, मतलब इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के समान गुरु की जो कृपा है, वो उस कृपा से ही व्यक्ति इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है. मैं अपनी वाणी को इन मंत्र के माध्यम से गुरु चरणों में अर्पित करना चाहूंगा. आप सब एक बार बोलिएगा,

0: बोलो मंत्र, बस इतना ही स्तुति।
1: गुरु जी का आदेश हुआ है, एक स्तुति आपके समक्ष माता जी की है, देवी की स्तुति है, उसको बोलना चाहूंगा।
0: इट इज वन प्रेयर
2: इमा
0: एडोरेशन
2: वो दौलत
0: ग्लोरी
2: टू
0: डिवाइन मदर
1: ललिता त्रिपुरा सुंदरी की यह स्तुति है। इस स्तुति के अंदर यह बताया गया है कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा अर्चना मंत्र किसी प्रकार से भी नहीं जानता हूं, पर मैं अपना सिर आपके चरण में अर्पित करता हूं। मैं आपके चरणों में अपना संपूर्ण शरीर मन वचन कर्म से आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए।

0: मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरि ओम।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदजी गुरुदेव की जय।

अक्षर प्रकार से बड़े उच्च वृत्ति से, विशुद्ध वृत्ति से, जो उसी ब्रह्म रूप में लिपायमान रहते हैं, उन महान सद्गुरुदेव के चरण के कमे कोटि सत नमस्कार करके ये सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगति मोति सह सो हम स्वाहा। ओम ह्यम हम सो हम स्वाहा। ओम ह्यम हम सह सो हम स्वाहा। सर्वर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे दीन कर रहा हूँ वो हमारे सारे मनोरथ को सिद्ध करे। ओम अग्नेर्वाक्मंसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम अग्नेर्वाक्मंसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम अग्नेर्वाक्मंसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम ह्रीं ऐं त्रैलोक्य मोहिनी चामुंडा महादेवी सुरासुर वंदनी ह्रीं ऐं स्वाहा। ओम क्रीं कानेन्दी भेदनाय अग्नेर्वाक्मंसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम अग्नेर्वाक्मंसी यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजुर्वेदेन जुष्टा सोमं पिबस्वाहा। परानं महाकालकालं कृपानं गुणांगार संस

0: सतगुरु भगवान की जय हो।
1: बोल दे मैं एक आध बोल दे फिर से
2: बताओ थे
0: बोल ले
2: नहीं हां ले
1: ये ले।

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवनपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम

the spiritual and ethic principles, where one understands the value of the Sanatana. The Sanatana values makes the human a human. So this, the education is from the master, from the guru. Only the language is different. You call master, and in Hindi we say guru. That's all. Jagda keval bhasa ka hai, aur kuch bhi nahi. Aap Ramayana Gita padhoge, to musliman shayad nahi samjhenge, svikar nahi karenge. Aur agar wo Quran Urdu padhenge, to aap svikar nahi karoge, kyun aap nahi samajh rahe ho. Baat wohi hai. Achhi baat Ramayana bhi kehti hai, achhi baat Quran bhi kehti hai, Bible bhi kehti hai. Different is only the language. It's only one. Ek kehta hai ki mere dadi sa hai, koi hai? Dooja kehta hai ki mari mami hai, koi hai? Thara mama ri bu hai koi? Mari maa hai, mami nahi kano. Ek hai mari dadi hai, ke mare maa hai. दूसरा कहता है कि हमारी बेटी है, तीसरे कहता है हमारी बहन है, और दूसरा कहता है हमारी बुआ है, दूसरा कहता है हमारा काकी है, आंटी नहीं, ये बेटा आजकल कहे कि आंटी, ये आंटी थारी बापरी, आड़ी क्यों गंदी गंदी बातें करो, हैं काका काकी बाजी बाजी वो करो, लेकिन दूसरा कहता है मेरी बेटी है, हमारी पोती है वो महिला एक ही है कि नहीं? एक ही महिला है, नाम से बांट दिया, भाषा से बांट दिया, दादी है, माँ है, बेटी है, बहन है, बुआ है, काकी है, पोती है, बट है वो एक ही. सिमिलरली गॉड इज वन, विच गॉड हैज नो नेम, एंड ऑल आर टॉकिंग अबाउट अ गॉड फॉर वननेस. So this education, the ethic and spiritual education, we get in the Gurukul. Gurukul means school. अब हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं कि जाटन गुरुकुल में भर्ती करिया है. नहीं बाप जी, हमारे गुरुकुल में नहीं जानो, हाँ हमारे स्कूल में जानो है. उन्होंने ठा तो है को नहीं. बाबूजी मां टावर ने हिंदी नहीं पढ़ा, नहीं अंग्रेजी पढ़ाओ तो नौकरी लागी. कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग इस प्रकार से सोचते हो कि हिंदी पढ़ाओ तो हमारे छोरा ने नौकरी नहीं लागे. नौकरी पड़ी खाडा रे माए. मनुष्य बनाओ बच्चे को. आज हिंदी का टीचर ही को नहीं मिले, संस्कृत का कोई मास्टर ही को नहीं मिले, न अंग्रेजी पढ़ी रहो तो फिर मन झाड़ू लगावाने कोई नहीं रखे. इसलिए दुर्भाग्य है कि हम हमारी संस्कृति को छोड़ दिया, इसलिए कि तुम्हारे पास गुरु ज्ञान नहीं है. तुमने वो ज्ञान सीखा, तुमने वो संस्कार सीखे, जो संस्कार तुम्हारे को आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि वो संस्कार आपको वो संस्कृति नहीं बनाने देगा. संस्कारों से संस्कृति बनती है, और संस्कृति से मानव बनता है, मानवता की देश की रक्षा करता है संस्कार. आज तो बस नौकरी चाहिए पे, अंग्रेजी बोलो. नहंग जगह अंग्रेजी बोले बेटा, न केवल अंग्रेजी में भाषण दोगे, नहीं नहीं मैं हिंदी में बोलू. बाप जी बोलो आदि कचरी है. हमें अंग्रेजी बोले, मैंने कहा
मैं रस तो पूछ कर जानो के स्टेट, अरे बाबा जी स्टेट जाओ, अरे की स्टेट में जाऊं, गुजरात में जाऊं के राजस्थान में जाऊं के मध्य प्रदेश में जाऊं, हमें स्ट्रेट तो नहीं कह रही, स्टेट स्टेट आ थोड़ी अंग्रेजी, अरे पूरी सीखी नहीं। बंगाल से एक लड़का गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, 3 साल के बाद वापस आया और रविंद्रनाथ टैगोर के पास गया, अंग्रेजी बोल रहा है, टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं, तो टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं तो वो टैगोर साहब को कहते मुझे अंग्रेजी पसंद है, तो टैगोर साहब ने कहा अच्छी बात है बोलो अंग्रेजी, वो 4 शब्द नहीं कियो, और टैगोर साहब ने कहा कि बेटा तू अंग्रेजी ही क्यों बिना ही तू बंगाली भूल गो है, तो तुम लोग अंग्रेजी पूरी ही क्यों बिना थे, मारवाड़ी ने राजस्थानी भूल गया, हमारी मातृभाषा है उसके द्वारा ही, उसी भाषा के द्वारा तुम्हारी शोभा है और दूसरी शोभा नहीं है, हमारे देश की संस्कृति वही काम आएगी। कहा है कि बणियाणी रेसी नहीं रेसी सुधारी, होनारी परिजाव सी के बाबी कुमारी है, कि बणियाणी रे नी ने रेसी सुथारी, आ होनारी परिजाई के बाबी कुमारी, कौन कह रही है, रावण को, रावण की पत्नी के, रावण तू बना करके हट करके सीता को लाया, वो नहीं रहेगी, वो थाकी को नहीं है, रेसी सुथारी थारी है वो ही रहूंगी है, हट करियो तो होनारी लंका परी जाई, कौन केवे कुंभकर्ण की बाबी मंदोदरी के रही है, तो इसलिए थे उदार लायोड़ी भाषा ने, पढ़ने पेट भरा मत करो, बुद्धि ज्ञान उसमें ज्ञान भरा है संस्कृति के अंदर में। एनी हाउ सॉरी दैट आई हैव टू स्पीक बिटवीन इन हिंदी एंड संस्कृत, आई डोंट नो सो आई हैव टू स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश बिकॉज ऑल ऑफ यू, बट आई एम टेलिंग दिस इंडियंस दे शुड लर्न देयर मदर टंग and then after they should learn English. They don't know English and they forgot the Hindi. I asked someone address, I have very wish the direction is going there. Oh, where is that place? So say state. State is not a path, direction is straight. But wo straight to aata nahi hai. Or महाराज जी वो क्या कहते योगा के अंदर हमें, तो हम कहते हैं अच्छा भाई, अरे भाई गाड़ी चलाओ कॉन्सेंट्रेशन करो, तो वो कहे कौन सा स्टेशन, अरे बाप जी कौन सा स्टेशन चल रहे हो नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन ने कौन सा स्टेशन, आ थारी अंग्रेजी ने आ थारी हिंदी, सही बात है कि नहीं, इसलिए दैट्स वाई गुरु पूर्णिमा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, सनातन वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन एबिलिटीज, दिस इज अ गुरु पूर्णिमा एंड देन इज अ वर्शिप्ड ऑफ दैट divine who gave you the knowledge, then is the birthday of Bhagwan Vedvyasa and every disciple adores, remembers to keep this living culture. So Guru Purnima is a festival of the culture, to protect the culture is called the living culture. सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म, सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म, व्हाट डज इट मीन्स।